0: बनेगा देन इट वेक्स.
1: एक्चुअली फॉरगॉट द नेम ऑफ अ मूवी बट आई वाज रीडिंग और लिसनिंग दे वर सेइंग कि एट द टाइम मूवी वाज फ्लॉप राइट नो वन लाइक्ड इट बट उस जमाने के मुताबिक से मूवी वाज वे अहेड सो पीपल डिडंट एक्चुअली अंडरस्टैंड द मूवी और अभी लोग मूवी अंडरस्टैंड कर रहे हैं लाइक दे आर एक्चुअली वाचिंग दैट मूवी बट इट्स टू लेट नाउ.
0: टू लेट हां हिट तो नहीं होगा बट अगर वही को रीमेक करोगे या डिफरेंट कैरेक्टर्स यूज करोगे जस्ट बिकॉज नॉट मेनी पीपल हैव वॉच्ड दैट मूवी वो मूवी चल जाएगा. तो ठीक है चलो देखते हैं कौन सा आपने जो सॉन्ग नेक्स्ट हमारे लिए तलाश किया है.
2: रोल कैमरा एंड एक्शन.
3: अरे वो लोग को शूट कर रहे हैं
4: हमारे बिना शूटिंग कैसे कर रहे हैं
5: ये तो अपना गाना कम ऑन बॉल की शूटिंग हमारे बगैर
6: बोले

0: Jalsa Fiji Radio, Jalsa Talent Series and Jalsa Business Series would like to express their gratitude to the following sponsors. Generation Homes, contact them for your building requirements. And Lifestyle Solutions, contact Richard Sevak if you need help with insurance. And contact Varun Jani of Next Step Accountants and Business Advisors for accounting needs. And contact Rohit Sajadeva of Better Choice Home Loans for your financing needs. And contact NZ Flames Baba at Wairaki Road for your hairdressing requirements. And contact T. Nandan of Govice Driving School if you need driving lessons. And contact Anshul Gupta of Client Real Estate, who can assist you with achieving a better sale for your property. And contact Monil Pratap of Majestic Stays if you are looking for accommodation in the city. And contact Dini from On The Go Eastgate for all mechanical requirements.
1: जी हाँ दोस्तों, साथ ही शुक्रिया करना चाहेंगे आप लोगों को हमारे साथ जुड़े हैं इतने देर से, और भी हम आप तक सॉन्ग्स पहुंचाने की कोशिश करेंगे. द सॉन्ग देयर वाज जस्ट प्ले टुडे आई मे हैव हेड बिफोर या पहले सुना बट मुझे याद नहीं, बट होप ये गीत भी आपको अच्छा लगा होगा. और चलो हम नेक्स्ट सॉन्ग पर पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले जो अभी विंटर चल रहा है, आई नो इट्स अ बिट कोल्ड एंड होप यू आर ऑल प्रिपेयर्ड फॉर द विंटर. आई एम नॉट श्योर आप विंटर से लड़ने के लिए क्या इस्तेमाल कर रहे हो. आई थिंक हीट पंप इज द कोल्ड फॉर द डे.

0: में भी अभी भी कुछ लोग यूज़ कर रहे होंगे जो फाया एट योर होम, बट आई थिंक मेजोरिटी अब हो चुका है हीट पम्प्स. और कॉस्ट ऑफ जो पावर देट देर इज़ नॉट गोइंग टू गो इलेक्ट्रिसिटी, तो इट इज़ कॉस्टली. देखते हैं कि आगे क्या होता है. एंड दे टॉक अबाउट सोलर, बट आई नॉट रियली श्योर हम किस लेवल पे है और वेदर न्यूजीलैंड इज़ रेडी टू एम्ब्रेस या तो फिर सोलर इज़ रियली गोइंग टू वेक फॉर न्यूजीलैंड. साल में वही सुन रहा था अबाउट सोलर कि इफ इवन इफ यू हैव दोज पैनल्स देन यू हैव टू रेगुलरली क्लीन इट. इज
1: जी
0: दैट करेक्ट?
1: हाँ, यू हैव टू क्लीन कि
0: बट
1: यार डस्ट रहेगा तो फिर पावर नहीं जनरेट करेगा।
0: आई नो व्हेन आई वाज इन फिजी, अगर किसी के घर पे ना कॉरूगेटेड लाइन पे अगर आपको जाकर कुछ करना है, इट वाज वेरी इजी नो फॉर अस. इट वाज अ स्टैंडर्ड थिंग, सिर्फ लेडा मिल जाए हम चढ़ के चले जाते थे. बट वही एक बार मैंने ट्राई किया था, आई गोट टायर्ड रूफ बट आई गोट अफ्रेड बिकॉज इट वॉज क्वाइट जो टिल्टेड था एंड आई गोट अफ्रेड. मैंने बोला नहीं नहीं ओनली प्रोफेशनल्स शुड डू दैट अदरवाइज आई विल गेट हिट. तो आई थिंक दैट कुड बी ए डिफिकल्टी फॉर मेनी पीपल ना, आपको प्रोफेशनल से क्लीन करना पड़ेगा.
1: Not really, just how's it done?
0: How's it
1: It's
0: done?
1: mainly dust जो भाई जाता ना, it's nothing वैसा कुछ मजा नहीं होता है, it's just dust.
0: But I think it's going to, I don't know, उतना easy नहीं ना. I think it's going to take some time before people accept solar या adopt कर पाएंगे.
1: It's not about accepting, like people are accepting solar, but in New Zealand solar is very costly to install. The price you're paying to get solar installed, you're not getting that return. You're actually losing money. That's why people are not going towards solar.
0: जिसको ग्रीन एनर्जी चाहिए, जो इकोनॉमी के बारे में सोचते हैं, इज इट इकोनॉमी
1: एनवायरमेंट
0: एनवायरमेंट के बारे में
1: सोचते हैं. बट इन सेइंग दैट न्यूजीलैंड इज ग्रीन एनर्जी, यहाँ पे वी डोंट यूज कोल, वी डोंट यूज डीजल ना, अनलेस ऑन छोटा अपन जनरेटर ऑन यूज करे पीपल लोग एवरी नाउ एंड देन, इट्स डिफरेंट. बट न्यूजीलैंड एनर्जी इज ग्रीन एनर्जी ना, इट्स नॉट बींग जनरेटेड बाई एनी अदर मीन्स ना, इट्स विंड और hydro.
0: But in science, I think we're doing pretty good with the electric cars, I think.
1: I think so, but I mean, it's better than before because now you're getting infrastructure for it. Because the first problem was charging stations.
0: So you go to if you're going to Queenstown, then good luck.
1: Yes.
0: And the other thing I've heard is it doesn't take long. I think 10, 15 minutes you can get charged.
1: Depending what car it is, but in saying that, ki abhi jitna nawa vehicles hai, sab they're getting more efficient. So batteries last longer, they give you more kilometers and faster to charge. As for the first generation that came out, it took longer to charge and shorter distance now. So it's improving.
0: And I think the other thing is happening together with those electric cars, because agar purane ghar pe jaoge, I don't think the houses is built in that way, garage setting, whatever, it might not have the right port jahan pe aapko charger milega. For example, if you're buying a old home, then obviously don't expect ki wahan pe EV charger rahega. But the newer homes are made in such a way that I think they are making a provision for that.
1: Not all of them. It's like a you can actually use normal, like agar purana agar pe jayega, you get chargers that you just plug into wall and use them.
0: As long as all aapko output chahiye na, kya kehte hain, plug.
1: Haan, to ghar mein kahin na kahin to rahega na, ya garaj mein rahega. So it depends. The difference where it makes is the capacity. Just abhi naya ghar hai and you're giving a designated charging cable or charger port. So you can actually wire to that, na ki acha bada wire laga do, which can pull more current, charge faster, na. But purana ghar pe sabhi kaha na ki it's not wired for electric cars. So you'll still be able to charge your car, but it might not be as fast as what other people charge it, na. So it will differ from house to house.
0: I see. Well, we are going there. देखते हैं कि आगे क्या होता. But those are just some thoughts हमारे तरफ से. But we have another song for you. देखते हैं कि कौन सा ये next गीत है.

Jalsa Fiji Radio, Jalsa Talent Series and Jalsa Business Series would like to express their gratitude to the following sponsors. Generation Homes, contact them for your building requirements. And Lifestyle Solutions, contact Richard Sevak if you need help with insurance. And contact Varun Jani of Next Step Accountants and Business Advisors for accounting needs. And contact Rohit Sajadeva of Better Choice Home Loans for your financing needs. And contact NZ Flames, Baba at Wairaki Road for your hairdressing requirements. And contact T. Nandan of Govice Driving School if you need driving lessons. And contact Anshul Gupta of Climb Real Estate, who can assist you with achieving a better sale for your property. And contact Monil Pratap of Majestic Stays if you are looking for accommodation in the city. And contact Dini from On The Go Eastgate for all mechanical requirements. जी हाँ, अगर आपकी गाड़ी का कुछ तकलीफ दे रहा है, देन डेनी ऑन द गो ईस्ट गेट आप जा सकते हो. और ड्राइविंग लेसन अगर आपको चाहिए, जैसे कभी कभी होता है ना कि आपको आपका कोई चिन्हने वाला होगा या आपको ही लेना होगा ड्राइवर्स लाइसेंस, आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया टू हैव अ फ्यू लेसन्स सो दैट व्हेन यू गो फॉर द एक्चुअल टेस्ट आसान रहेगा. अदरवाइज वो हैसल हो जाता ना, इफ़ यू फेल समथिंग एंड देन यू डोंट अंडरस्टैंड, फिर आपको फिर से जाना पड़ता है एंड इट जस्ट टेक्स अ बिट ऑफ टाइम एज वेल. और Majestic Stays, there's some accommodation in the city, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो. अभी हमारा जो वन स्टेडियम इज डूइंग प्रीटी गुड, फुल हाउस काइंड ऑफ चल रहा है. एंड दी जो इनकम प्रिडिक्ट हुआ था विद इन द कोटा, एक्चुअली आई थिंक 3 शोज में उतना पैसा वापस आ गया थ्रू द वन स्टेडियम, तो विच इज़ डूइंग अ गुड जॉब फॉर द सिटी. बट ओवरऑल उतना ज़्यादा, आई मीन इट मे हैव हेल्प्ड अस but not maybe as much as we wanted because the rate is increasing by 7% or something. So every deduction may you will be paying some dollars extra and it is what it is. And there's other changes happening as well jo dheere dheere aapko jo pata chale hi jayega. Abhi to thand chal rahi hai, winter chal rahi hai. So once again I hope you are keeping yourself warm. To chalo dekhte hain hamare paas kaun sa next song hai.

0: Jalsa Fiji Radio, Jalsa Talent Series and Jalsa Business Series would like to express their gratitude to the following sponsors. Generation Homes, contact them for your building requirements. And Lifestyle Solutions, contact Richard Sevak if you need help with insurance. And contact Varun Jani of Next Step Accountants and Business Advisors for accounting needs. And contact Rohit Sajadeva of Better Choice Home Loans for your financing needs. And contact NZ Flames Baba at Wairaki Road for your hairdressing requirements. And contact T. Nandan of Govice Driving School if you need driving lessons. And contact Anshul Gupta of Klein Real Estate, who can assist you with achieving a better sale for your property. And contact Monil Pratap of Majestic Stays if you are looking for accommodation in the city. And contact Dini from On The Go Eastgate for all mechanical requirements. जी दोस्तों साथी, होप कि यू आर एंजॉयिंग द प्रोग्राम. वैसे हमारे पास अब बहुत समय तो नहीं बचा, विल सी हाउ मेनी सॉन्ग्स वी कैन प्ले बिकॉज वी आर ऑलमोस्ट देयर. तो चलो हम जल्दी से एक सॉन्ग सुन लेते हैं, उसके बाद में वी विल सी हाउ मच मोर टाइम वी हैव आपसे अलविदा लेने के लिए.
1: मजे की बात यह है, ये कैश जिसे मिला वो पैसा उसका.

0: Jalsa Fiji Radio, Jalsa Talent Series and Jalsa Business Series would like to express their gratitude to the following sponsors. Generation Homes, contact them for your building requirements. And Lifestyle Solutions, contact Richard Sevak if you need help with insurance. And contact Varun Jani of Next Step Accountants and Business Advisors for accounting needs. And contact Rohit Sajadeva of Better Choice Home Loans for your financing needs. And contact NZ Flames Baba at Wairaki Road for your hairdressing requirements. And contact T. Nandan of Govice Driving School if you need driving lessons. And contact Anshul Gupta of Klein Real Estate, who can assist you with achieving a better sale for your property. And contact Monil Pratap of Majestic Stays if you are looking for accommodation in the city. And contact Danny from On The Go Eastgate for all mechanical requirements.
1: जी हाँ दोस्तों, सदियाँ जलसा फिजी रेडियो और अब समय आ चुका है हमें अलविदा लेने के लिए। आशा करते हैं कि आपका समय अच्छी तरह बीता। शुभ रात्रि, आप एंजॉय कीजिए। दो इट्स अ बिट कोल्ड और विंटर है कीपूम। तो चलो हम लास्ट सॉन्ग आपके लिए छोड़े जाते हैं इस वादे के साथ में। वी विल गेट इन टच अगेन, हम फिर जुड़ जाएंगे इसी तरह स्टूडियो में नेक्स्ट सैटरडे। और साथ साथ में हमारा जो वीडियोज़ है, KYC है और टैलेंट सीरीज है, ये चलता रहेगा। कीप सपोर्टिंग अस, जब भी मौका मिले देन जुड़ जाइए। तो चलो नेक्स्ट सॉन्ग फ्रॉम साहिल, बाय।